चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिं उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाने लकी ड्रॉ कूपन पाने इन्वर्टर एसी एक टन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाने एक जोड़ी को लगी बाली टूर यूरो पेंट घर मात्र होना रंगाउनुहोस् सपना बनी।

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड
1: महाचार महापहार
2: शाओमी वा रेडमी को फोन किन्दा उपहार नै उपहार यो दशैं तिहारमा शाओमी वा रेडमी को लेटेस्ट फोन किनी एमआई स्पेस आईएमईआई नम्बर टाइप गरी व्हाट्सएप मार्फत पठाउनुहोस् र हरेक दिन 8 जनालाई रेडमी बर्ड 6 प्ले हरेक हप्ता 10 जनालाई रेडमी वाच 6 एक्टिभ अनि बम्परमा 4 जना विजेतालाई थाइल्यान्ड हलिडे यो योजना मङ्सिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको शाओमी डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस्
3: शाओमी किन्दा उपहार एभ्रीडे
4: दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा हाम्रा योग्य इमानदार सक्षम र कर्मठ प्रजातान्त्रिक उद्यमी संघ उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई अत्यधिक मतले विजय बनाऊ प्रजातन्त्र व्यवसायको हकहित र स्थानीय विकास हाम्रो प्रतिबद्धता नरेश कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष भरत प्रसाद रेग्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मन बहादुर बुढाथोकी उद्योग उपाध्यक्ष माधव खनाल महासचिव सूरज बुढाथोकी सचिव दीपक पण्डित कोषाध्यक्ष पुष्कर राज न्यौपाने वामदेव सह कोषाध्यक्ष सुलोचना गौतम पोखरेल महिला सदस्य निम बहादुर बुढाथोकी वस्तुगत सदस्य बदरुद्दीन राई सदस्य दिवाकर पाण्डे दीपक सदस्य मुक्तिराम खनाल सदस्य थानेश्वर बुढा सदस्य केशव डीसी सदस्य ओमकान्त रेग्मी सदस्य सुभाष न्यौपाने सदस्य हुकुम पोखरेल सदस्य निर्वाचन मिति यही असोज
5: 24 गते शनिबार
6: मध्यपश्चिम टाइम चेक यति बेला बिहानको 10 बजेको छ।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक
2: नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 0825917094, मोबाइल नम्बर 9822877094।
3: नेपाली कलाहरू रंग सँगै बाँच्छन्,
4: एभरेस्ट कलरले खुशीहरू

बायोनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सबै कनेक्टेड।

आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: రంగా ఉండేది మీరు ఎవరెస్ట్.
1: स्वर्गदारी चलचित्र मंदिर घोराई दांग भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन्। नेपाली कथानाक चलचित्र चमेली को पोई बा एक योद्धा पेंशन पट्टा।

0: साथै हिन्दी कथानक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है।

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 0825917694, मोबाइल नम्बर 9822877794।
3: दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा हाम्रा योग्य, इमानदार, सक्षम र कर्मठ प्रजातान्त्रिक उद्यमी संघ उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई अत्यधिक मतले विजयी बनाऊ। प्रजातन्त्र व्यवसायको हकहित र स्थानीय विकास हाम्रो प्रतिबद्धता। नरेश कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष, भरत प्रसाद रेग्मी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मन बहादुर बुढाथोकी उद्योग उपाध्यक्ष, माधव खनाल महासचिव, सूरज बुढाथोकी सचिव, दीपक पण्डित कोषाध्यक्ष, पुष्कर राज न्यौपाने वामदेव सह कोषाध्यक्ष, सुलोचना गौतम पोखरेल महिला सदस्य, निम बहादुर बुढाथोकी वस्तुगत सदस्य, बदरुद्दीन राई सदस्य, दिवाकर पाण्डे दीपक सदस्य, मुक्तिराम खनाल सदस्य, थानेश्वर बुढा सदस्य, केशव डीसी सदस्य, ओमकान्त रेग्मी सदस्य, सुभाष न्यौपाने सदस्य, हुकुम पोखरेल सदस्य। निर्वाचन मिति यही असोज
4: 24 गते शनिबार।
5: मध्य पश्चिम FM 91.4 MHz।

0: घर घर में रेडियो मध्य पश्चिम
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़नी नसा

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँभरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: गंगा रेडिस मेरो एवरेस्ट
1: यहाँ गजब का ऑफर आयो कोसेनी बेकरी र बीएन फूड ट्रक को फेसबुक पेज फलो लाइक शेयर कर 50 कार्टुन पुरस्कार दिनुस लो गोजी वाला मोबाइल झिकी हालनुस त अनि कोसेनी बेकरी र बीएन फूड को पेज फलो गर्नुस पुरस्कार दिनुस भयंकर मजा
0: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ।